प्रस्तुत है राग कालिंगड़ा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग कालिंगड़ा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग कालिंगड़ा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल है देखो दिनकर के अंतर की। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई

0: So the name of the raga is Kalingda from the North Indian or Hindustani tradition. Let's hear more about this raga from Khurshid Anwar.
1: Kalingda, Bhairav Thaat ka sampoorn raga hai. Iska vadi sur pancham aur samvadi kharaj hai. Gaane ka waqt raat ka pichla pehar hai. Is raga ki shakl Bhairav se bahut milti. मगर इसका मिजाज शोक होने की वजह से इसमें अक्सर दादरे और छोटी-छोटी बंदिशें गाई जाती हैं तेज लय में यह राग खूब खिलता है इसके बरक्स भैरव की मतानत और गंभीरता उसके देवत और रिखब का झुलाना इन दोनों रागों को एक दूसरे से दूर रखता है कुछ गायक इस राग को मध्यम वादी रख के गाते हैं और बास गाने वाले दोनों मध्यम इस्तेमाल करते हैं इस सूरत में तीव्र मध्यम सिर्फ अवरोह में लगाया जाता है पकड़ पाधा मापा गामा सारे गामा आरोह सारे गामा पाधा नीसा अवरोह सानी धापा मागा रेसा